0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है, फॉर्मूला सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है। हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन। टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड। और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया। शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं, ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती हैं बातें। एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको।
3: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

जाइए सजना एंड धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है, जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने एंड इट स्टार्स सनी देओल एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।

ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

0: नंबर 16।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: इश्क अमीना को नए जमाने में दोबारा सुनते हुए मुझे एक सवाल याद आ गया। हम पुराने गाने इतने सालों तक अपने पास आखिर क्यों रखते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो किसी उम्र का साउंडट्रैक होते हैं। और इमरान हाशमी के साथ तो ये बात और भी सच हो जाती है। थिंक ऑफ हिज डिस्कोग्राफी, तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ, फिर मोहब्बत, वो लम्हे वो बातें, जरा सा दिल इबादत, MP3 से iPod, iPod से फोन, फोन से स्ट्रीमिंग। फॉर्मेट बदल गया लेकिन गाने नहीं। और अब आवारापन 19 साल बाद उसी दुनिया का एक नया चैप्टर लेके आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। लेकिन मैंने इमरान से एक सवाल पूछा, हम तो आज भी उनके गाने लूप पर सुनते हैं, लेकिन क्या वो अपने गाने खुद सुनते हैं?
1: I don't like constantly hear my songs. Like आवारापन, I've heard the songs after almost 18 years. जब मैं फिल्म कर रहा था, तो I revisited the song, I saw the film. So the thing is with actors, we hear it hundreds of times. So we are, our thing is something else. Only we have heard it so much that we've consumed it so much that we kind of detached from it also. Although they are beautiful songs, but जब मैं दोबारा सुनता हूँ, it's just this nostalgic experience that you have. But I think एक जो एक intuitiveness होती है, अगर आपने गाना एक बार सुना and you have this reaction where you want to either hum it or you want to hear it again and again, वो एक तरह से मेरे लिए एक I guess a litmus test होता है whenever we pick up songs for my films. And उसकी melody बहुत simple होनी चाहिए and ज़ुबान पे चढ़नी चाहिए।
0: इमरान का जवाब मुझे बहुत interesting लगा, क्योंकि हम जिन गानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, एक एक्टर के लिए तो वो अक्सर सिर्फ एक मेमोरी बनके रह जाती हैं। लेकिन जैसा इमरान ने कहा, उनका लिटमस टेस्ट काफी सिंपल है। क्या मेलोडी सुनते ही क्या आपका दिल करता है उसे गाने का? 19 साल बाद तेरा मेरा रिश्ता अब भी वही कर रहा है। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग ऑन नंबर 15, दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस आइकॉनिक सॉन्ग। नंबर 15।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 14।

होश में ले आते हैं। और आजादी के इस हफ्ते मेरे जहन में एक सवाल है, 80 साल बाद इंडिया हमारे लिए आखिर क्या है? क्योंकि 80 साल बहुत होते हैं। हम वो इंडिया नहीं हैं जो 1947 में आजाद हुए थे। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अपना स्पेस प्रोग्राम है, दुनिया भर का पैसा इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में आ रहा है। हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे, हम दुनिया के सामने अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन फिर इसी इंडिया में ट्रैफिक आपका आधा दिन खा जाता है, इनइक्वालिटी आंखों के सामने दिखती है, करप्शन से रोज सामना होता है, हर बात पर बहस होती है। कभी कभी इस पूरे सर्कस को देखकर दिल से एक आवाज निकलती है, यार हम आखिर कब बदलेंगे? शायद इसी बेचैनी से हमें अपना जवाब मिल जाता है। इंडिया बदल तो रहा है, बस हम उसे और तेज बदलते देखना चाहते हैं। और वो इम्पेशंस, वो एम्बिशन, वही तो है नए इंडिया की आवाज। नंबर 13 पर कहर मचा रहे हैं गुरु रंधावा इन धमाल, लेकिन नंबर 12 पर वो फिल्म जो एक नया इंडिया सामने लेके आई, धुरंधर का ये गाना आरी आरी। नंबर 12।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 11.

रीमिक्स बनाने का एक फॉर्मूला सा बन गया है। पुराना गाना उठाओ, नई बीट डालो और गाना पक्का हिट है। लेकिन अगर इतना ही सिंपल होता तो हर रीमिक्स चार्ट बस्टर होता। सच ये है, कुछ रीमिक्स कल्ट बन जाते हैं और कुछ बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस हफ्ते नंबर 11 पर द हाईएस्ट गेनर, वो गाना है जिसकी मैंने काफी क्रिटिसिज्म की है एंड उसके बावजूद इट इज द हाईएस्ट गेनर। चार पोजीशंस अप फ्रॉम नंबर 15 टू नंबर 11 दिस वीक इज आंखों से तूने ये क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है। देखो चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि लोगों को ये वर्जन काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे अब भी नहीं आता। मेरी प्रॉब्लम रिक्रिएशन से नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सॉन्ग की यार आइडेंटिटी बदल चुकी है। गुलाम में जब गाना आया था तो वो एक सॉफ्ट रोमांटिक कॉम्पोजिशन थी, उसकी खूबसूरती उसके ठहरे हुए इमोशंस थे। आप उसे रिक्रिएट कीजिए, अरेंजमेंट बदलिए, साउंड कंटेम्प्रेरी कीजिए, लेकिन उसे 2026 का एक डांस फ्लोर बैंगर मत बनाइए। आप उसकी रूह को ही बदल रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल एक फिल्म आई थी कार्तिक आर्यन और अरण्या पांडे की कॉल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, उसमें एक गाना था सात समंदर पार, इसके साथ भी यही एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक आइकॉनिक 90s डांस नंबर जिसे नए जमाने के हिसाब से रीशेप करने की कोशिश की गई। रिजल्ट, वेल इट्स स्पेक्टेक्युलरली फेल्ड टू द पॉइंट कि वो गाना मिर्ची टॉप 20 पर फीचर तक नहीं हुआ।

गया। Now you understand, जब एक डांस नंबर को आप रोमांटिक गाना बना देते हो, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस गाने पे नाचूं या किसी से प्यार करूं। So what I'm saying is, गाना रिक्रिएट करो, उसकी आइडेंटिटी को नहीं। और इसका प्रूफ देने को तैयार हूं मैं। एक गाना था बार बार देखो मैं, विच वॉज अ रिक्रिएशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर 90 सॉन्ग संग बाय अमर अर्शी। उस गाने में प्रोडक्शन बदली, साउंड बदला, लेकिन उसकी असली जान, वो डांस फ्लोर वाली जान, वो नहीं बदली। एंड दैट्स व्हाई द सॉन्ग स्टिल बिकेम अ चार्ट बस्टर। काला चश्मा द न्यू वर्जन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

कभी सोचा है कि इंडिपेंडेंस डे आते ही हमारे पास कुछ गाने ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जय हो संदेश से आते हैं, ए वतन ये जो देश है तेरा, और आने भी चाहिए। लेकिन अगर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देश की तारीफ करना नहीं है, तो शायद कुछ और गाने भी हैं जो इस मुल्क की रूह को, उसकी आत्मा को समझते हैं। ये देश से प्यार का गाना नहीं है, ये उस बेचैनी का गाना है जो कहता है जो गलत है उसे बदलना है, और फिर आता है साड़ा हक।

एक आवाज जो कहती है कि मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन इस इंडिया को सिर्फ हक नहीं चाहिए, उसे आजादियां चाहिए।

कभी घर से, कभी डर से, कभी उन एक्सपेक्टेशन से जो हमारे लिए किसी और ने लिख दी, और फिर जब सब कुछ मुश्किल लगे तो आशाएं हैं।

क्योंकि शायद इस देश की सबसे बड़ी आदत ही यही है, उम्मीद छोड़ने से इनकार, और फिर वो आवाज जो उम्मीद से एक कदम आगे जाती है। ये गाने देश का नाम नहीं लेते, लेकिन शायद देश हम में जो जगाता है उसका नाम जरूर लेते हैं। बेचैनी, हक, आजादी और उम्मीद, ये भी तो इंडिया है। इस काउंटडाउन पर नंबर 9 पर है धमाल का गाना साड़ी, लेकिन अभी के लिए चलाऊंगा गाना नंबर 8 आवारापन 2 से, सुबोध शर्मा की आवाज में। यह है बेजुनून नंबर 8।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 7। तूने

0: तुम्हें वो बंधु की वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है और लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वाज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उभर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज में, दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5.

0: तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड्स में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं। ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक।
1: नंबर 4।

Energy. It's hot. Only on Mirchi. It's hot. Number 3.

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह। नंबर 1।

0: आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते, उसका मतलब ढूंढते हैं। शायद यही है इस मुल्क का असली गाना, सवाल, बेचैनी और थोड़ी सी उम्मीद। और इन सबके बीच नंबर वन पर गहरा हुआ इटर्नल रोमांस। कुछ गाने चार्ट्स पर ऊपर रहते हैं और कुछ वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। ये था आपका मिर्ची टॉप 20 एंड मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई स्टोरीज और नए गानों के साथ। तब तक गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

Happy Independence Day, everybody. Well, independence का मतलब सिर्फ आजादी मिलना नहीं, आजादी का मतलब है अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि फ्रीडम में फ्री है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल फ्री नहीं. Happy Independence Day once again, and with that I start today's Club Mirchi Independence Day special with DJ Richard and Mirchi Oyontika. Jai Ho.

मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, लेकिन मम्मी के सामने मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोलने से पहले उनका ही वाईफाई पासवर्ड याद से पूछ लेना, ठीक है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्लब मिर्ची।

हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई।

सिर्फ अपना राइट समझेंगे, इंडिपेंडेंस इनकम्प्लीट रहेगी, है कि नहीं? क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका के साथ, वेलकम बैक पीपल। थोड़ा ड्यूटी भी और थोड़ा डिग्निटी भी जरूरी है, थोड़ा दूसरों के लिए स्पेस भी बनाओ और नाचो हमारे साथ जब तलक तू बोले तब तलक।

सिर्फ एक ही गुजारिश है, इंडिपेंडेंट होने से अपनी आवाज को आप सुन सकते हो, लेकिन इतना भी इंडिपेंडेंट मत बनो कि दूसरों की आवाज को ही म्यूट पे डाल दो। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका के साथ। आप चाहे या ना चाहे, हम हैं आपके साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन दिखा। फ्रीडम का एक अंडररेटेड बेनिफिट तो यही है कि अपना म्यूजिक खुद चूज करो यार। क्लब मिर्ची पे आप कर सकते हो हमारे साथ। डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को फॉलो करो एंड पुट आउट रिक्वेस्ट्स इफ यू वांट।

देश सिर्फ मैप पे एक शेप है, ये वो जगह है जहाँ हमारे चॉइसेस का इम्पैक्ट किसी और की लाइफ पे पड़ता है। सोचो फिर आजादी सेलिब्रेट करो, आज तो तन्हा नहीं हो आप। क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योद्धिका के साथ।

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका के साथ। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इसका मतलब हर बात पे डिसएग्री करना नहीं होता, कभी कभी अपनी फेवरेट ओपिनियन को भी बोलना पड़ता है, भाई तू गलत है। दैट्स फ्रीडम टू, लेट्स एक्सरसाइज दैट, लेट्स ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिलजीत दोसांझ इन द हाउस लेडीज एंड जेंटलमैन।

वंस अगेन इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मैजिक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो। बस एक डिस्क्लेमर है, एक्सक्यूजेस का पेन यूज करके बेस्ट सेलर नहीं बनना है, ठीक है। और जादू तो मिलता ही रहेगा आपको क्लब मिर्ची पे, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो अंतिका जो है आपके साथ।

जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल, हो टोको करके गोल, सीटी बजा के बोल।

is well, all is well. We are all independent, but emotionally are we independent? Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. एक सीन का रिप्लाई ना आए तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाती है. थोड़ा सेल्फ लव भी रखिए सिटीजंस. हाँ, व्हाट इज लव?

मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ बॉर्डर्स नहीं, बिहेवियर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यूट तोड़ना, रूल्स तोड़ना, प्रॉमिस तोड़ना, ये इंडिपेंडेंस के प्रीमियम फीचर्स तो नहीं हो सकते। चलो अभी आवन जावन पे कॉन्सेंट्रेट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट लेडीज एंड जेंटलमैन

वेलकम बैक, डीजे रिचर्ड मिर्ची और ओमतिका आपके साथ। अब इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी। अपनी कहानी खुद लिखो, लेकिन दूसरों की कहानी में अनवांटेड विलेन मत बनो। तेरी मेरी कहानी जारी रहेगी ना दोस्त, क्लब मिर्ची पे।

बजती जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपनी चॉइसेस पे खुद खड़े रहना। फैशन हो, करियर हो, लव हो, दुनिया एडवाइस देगी, बिल आपको ही भरना है। ऑन दैट नोट चलो धुरंधर से सुनते हैं आरी आरी।

परसेंट रूल है, जो दिल करे करो, बस दूसरों का दिल तोड़ना उस कैटेगरी में नहीं आता। इश्क जलाकर आगे बढ़ेंगे क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और इस सोनी दे नखरे आपको प्यारे ही लगेंगे।

repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave.

मैं से हम तक जाना भी है इंडिपेंडेंस का मतलब. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योमटिका. बिकॉज एक कंट्री तब स्ट्रांग होती है जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस टीम वर्क में कन्वर्ट हो जाए. जैसे अल्फाबेट में सारे लेटर्स जरूरी है, ए बी सी डी.

Welcome back once again, people. Club Mirchi जारी है with DJ Richard and Mirchi और Yontika. Life में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को परमिशन देनी पड़ती है. इंडिपेंडेंट हो, अपनी खुशी के लिए किसी अप्रूवल कमेटी का वेट मत करो यार. चलो चलो.

रिपीट मत करो जो गलती कर चुके हो, उसको ट्रेडिशन मत बना। अपग्रेड योरसेल्फ एंड बैड हैबिट्स के लिए नो एंट्री। क्लब मिर्ची मिर्ची जरूर चटन मिर्ची और यौन टिका फिलहाल आपके लिए सेकंड हैंड टूटी फूटी जवानी।

is in the house.

चौडन मिर्ची और योंदिका। इंडिपेंडेंट सिटीजंस के ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम्स के साथ अलार्म भी लगाओ, बिकॉज फ्रीडम विदाउट एक्शन इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डे ड्रीम। गॉट इट?

on my socials too. My name is Ayantika, AYANTIKA. यार ना मिले तो मुझे ही अपना यार बना लो.

सेलिब्रेट भी फुल वॉल्यूम पे ही करेंगे। बस नेबर्स को याद दिला दे, उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेशली स्लीप। सो माइंड दैट वॉल्यूम। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देगा। टाइम टू गो डैंटन एंड

अपने सपने चुराने मत देना और किसी और के सपने का क्रेडिट भी मत चुरा लेना। इंडिपेंडेंट रहो पर ओरिजिनल रहो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

Welcome back, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi on your own thing. And right now it's time to listen to my favorite track. एक ऐसा गाना जो मुझे याद दिलाता है कि टॉक्सिसिटी को टॉलरेट करना लॉयल्टी नहीं, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नेशनल ड्यूटी जैसी इंपॉर्टेंट होती है. जहरीली रातें फॉर यू ऑन क्लब मिर्ची पीपल.

यहाँ पे प्यार का और दिलों का मेला ही तो लगता है हर वीकेंड। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका। सम्मा सम्मा, लेट्स गो।

शर्म समझा करो, टुडेज इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लाउड म्यूजिक तो बनता है। इंडिपेंडेंस डे पे यंग इंडिया को एक विश, सिर्फ जवान नहीं जागरूक भी रहो। एनर्जी तो है ही, यू समथिंग दैट मेक्स टुमारो बेटर, आई एम गोना फॉलो दैट फ्रॉम टुडे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑन यंतिका।

देश से प्यार करना इजी है, एक दिन फ्लैग लगाओ, फोटो लो, स्टेटस लगाओ। रियल लव रोज अपने आसपास को थोड़ा बेटर छोड़ना देन यू फाउंड इट। माँ तुझे सलाम। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं कलेक्टिव स्ट्रेंथ था। इसे याद रखिएगा, जब कंधे से कंधा मिलता है तब एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, हम है सुल्तान इस देश के।

बची ओयोंगिका। इंडिपेंडेंट सिटीजंस के ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, लेकिन ड्रीम्स के साथ अलार्म भी लगाओ, बिकॉज फ्रीडम विदाउट एक्शन इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डे ड्रीम। गॉट इट?

सेलिब्रेट भी फुल वॉल्यूम पे ही करेंगे, बस नेबर्स को याद दिला दे उनके भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेशली स्लीप। सो माइंड दैट वॉल्यूम, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो देगा। टाइम टू गो, टैंटना।

अपने सपने चुराने मत देना और किसी और के सपने का क्रेडिट भी मत चुरा लेना। इंडिपेंडेंट रहो पर ओरिजिनल रहो। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन द गा।

Welcome back, Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontek. And right now it's time to listen to my favorite track. एक ऐसा गाना जो मुझे याद दिलाता है कि टॉक्सिसिटी को टॉलरेट करना लॉयल्टी नहीं, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नेशनल ड्यूटी जैसी इंपॉर्टेंट होती है. Z

शर्म समझा करो, टुडेज इंडिपेंडेंस डे थोड़ा लाउड म्यूजिक तो बनता है। इंडिपेंडेंस डे पे यंग इंडिया को एक विश, सिर्फ जवान नहीं जागरूक भी रहो। एनर्जी तो है ही, यू समथिंग दैट मेक्स टुमारो बेटर, आई एम गोना फॉलो दैट फ्रॉम टुडे। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑन योर टिका।

देश से प्यार करना इजी है, एक दिन फ्लैग लगाओ, फोटो लो, स्टेटस लगाओ। रियल लव रोज अपने आसपास को थोड़ा बेटर छोड़ना देन यू फाउंड इट। माँ तुझे सलाम। वेलकम टू क्लब मिर्ची।

याद रखिएगा, जब कंधे से कंधा मिलता है तब एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका, हम है सुल्तान इस देश के।

0: बस तुम रहते हो।
1: झनक झनक झन टपक टपक झनक खनक खन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
2: Show.
0: Mythology का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग. यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न. यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं. पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं. बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ. यू नो, कल भी आज भी सब समय इट ऑल टाइम्स देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स. मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है. एंड वी आर ऑल इनसिक्योर. कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर. और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है. और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है. ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे. एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग. बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल. वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं. कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था. सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान. एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट. हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय. यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस. यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को. और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलेवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं. वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस और हमें मनुष्य बनना है. यू नो, ही इज अ वानर. वन का नर मीन्स सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन. लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है. आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान. ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून्ड बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे. वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस. तो स्टे ट्यून्ड.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल, उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं, एक बंदर कौन है। और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है। और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम, तो अगर मैं दूत हूं तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, आप मुझे बांध के लाए हो यहां पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूं। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है। एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूं, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है, मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है।

0: एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची, तो स्टे ट्यून्ड
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसको लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं की तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose.
3: All right. Thank you so much for the answer. Thank you.
0: Welcome, Akshata.
3: Yes.
0: तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.
1: मिर्ची, it's hot.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितने कैपेबिलिटीज हैं, ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन। जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं, तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था मैं इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था मैं 10 योजन जा सकता, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। So, इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम, एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं, एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने, कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज यू नो अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi #devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, की 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

यादों का पिटारा डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्ट अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की

सच सच दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। हे देखो देखो जानम हम

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या।
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और अधिकतना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है, क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: सनसनाए क्यों जिस्म थर थराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्यूकी सास भी कभी बहू थी, टुकुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एच सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ में

मिर्ची इट्स

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।